माटी का क्या तुप है स्वामी, मानस की गत एक ही। परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, उस अकाल पुरख वाहगुरु जी की कृपा सदका धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की प्रेरणा का सदका अज का यह कथा दरबार आयोजित किया गया।

आप समूह माई भाई कृपा करके एकाग्रता बख्शो। हजूर दे अमृत दी आपां विचार करनी, तां गुरु ग्रंथ साहिब करन कृपा। आप मेहर करके दाता विच वरते, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने गुरमुखां पासों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो खंडे बाटे दी पौ सिखां नूं दित्ती ते नाल खालसा पद नाल सुशोभित कीता मेरे गुरदेव ने, आपने सरवण कीता। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र बाणी दे आधार ते जो भी रहत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू बख्शिश कीती है, इस रहत दा आधार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी अंदर अमृत दा जिक्र बेअंत वरी आया, ते साहिब जी ने अमृत दा जदों जिक्र कीता ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर अमृत दे अर्थ भी वख वख ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों गुरदेव दे जदों असीं बचन पढ़ने हां, खंडे बाटे दे अमृत ही आपां आउणा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर गुरदेव ने बेअंत बचन अमृत के संबंध में कहे, असीं पढ़ने हां गुरदेव जी का बचन साहिब कहिंदे ने, सब रस मिठा मने अमृत के संबंधी, सुनया सा लोणे खट तुरसी मुख बोलना, मारन नाद किए। अगे साहिब कहिंदे ने, छत्ती अमृत भाओ ए जां को नदर करे। इत्थे अमृत का अर्थ केवल स्वादला भोजन, वख वख अर्थां विच आया। कह लगे, छत्ती अमृत भाओ एक जां को नदर करे। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दूसरा प्रमाण साहिब कहिंदे ने, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। उत्थे भी अमृत का अर्थ स्वादले भोजन। साहिब ने बाणी विच इक प्रमाण दिता, कहन लगे, एक मासाहारी एक तृण खाए इक ना छत्ती अमृत पाए। उत्थे भी अमृत का अर्थ गुरदेव ने स्वादिष्ट भोजन किया। खजूर की बाणी पढ़ते हैं, साहब ने अमृत के संबंधी मैं अर्थ करा, नाल एक बचन किया, दुध लई भी गुरु ग्रंथ साहिब शब्द अमृत वरते। साहब की बाणी का बचन आंदा, कहन लगे, पशु मिले चंगियाइया खड़ खावे अमृत दे। उत्थे भी जिक्र दुध की थां ते भी अमृत शब्द वरत्या। साहब की बाणी पढ़दे महाराज जी ने कृपा करके बचन किया, चंदन की भी अमृत नाल तुलना की। कहन लगे, मैला अगर बेरे है भुयंगा, बिख अमृत बस है एक संगा। उथे चंदन नू अमृत ते चंदन नू एक बराबरता दे दिती। साहब की बाणी पढ़दी हजूर ने बचन किया, कहन लगे, सोन कटोरी अमृत भरी, लहना मैं हर आग्या धरी। उथे भी साहब ने शब्द अमृत वरत्या दुध की थां ते। खैर, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच अमृत स्वादिष्ट भोजन नू भी कहे, अमृत दुध नू भी गया। हजूर की बाणी विच चंदन की गल करदिया भी अमृत शब्द वरत्या है, ते सतगुरु की बाणी पढ़दिया एक बचन आया, कह लगे, अमृत काया रह सुखाली, बाजी ए संसारो। उथे काया नू अमृत नाल साहिब ने दोनों नू इकट्ठिया कर दिता। कह लगे, अमृत काया रह सुखाली, इथे अमृत का अर्थ दुध नहीं, इथे अमृत का अर्थ स्वादिष्ट भोजन नहीं, इथे अमृत का अर्थ अपने आप नू अमर जानन वाला। अमृत काया रह सुखाली, हजूर की बाणी पढ़दे हैं, साहिब ने बाणी नू भी अमृत किया। कह लगे, हे मेरे मालिक जी, अमृत अमृत तेरी बाणिया, तेरे भगतां हृदय समाणिया। साहिब ने बाणी नू अमृत किया, कह लगे, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन हो वै परमगत मेरी। कह लगे, हमारी प्यारी अमृत धारी, बाणी नू क्या अमृत नाल भरपूर है, हमारी प्यारी अमृत धारी, गुरनिमख ना मनते तारी रे। साहब ने कहा, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। इत सारे दर ते कोई संभाल करे, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। कह साहब ने बाणी विच बचन किया, कह लगे, प्यारिया के बाणी ने भी शब्द अमृत वरत्या। मैं आना के खंडे बाटे दी पौल क्यों जरूरी।

जिंद वहुटी मरण वर ले जासी परनाए अपना हथी जूल कै गल लगे ताए वालों हों निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए फरीदा कीड़ी पवन दई खड़ा न आप मुहाए वालों निकी।

0: वास्ते वो मुक्ति का दरवाजा खुला ही बन जाएगा। तेनों नजर आएगा मेरे वास्ते दरवाजा रुकावट नहीं है। हुण धन गुरु नानक साहब जी ने मारू राग दे अंदर एक बचन कह कह लगे, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा लीजे तिल ज्यों पीड़ी। एदा मतलब कोई इस तरह का रस्ता, ते ओ रस्ता की है? कोई स्पेस दे अंदर इस तरह का मुक्ति का दरवाजा है, किसी जगह ते खास बनिया मुक्ति का इस तरह का राह है? इस समाज दे अंदर ही अपने आप नूं बिल्कुल निर्माण करना, उस राह विचों निकलिया जाना है। ते जे कोई बुराई, कोई औगन, कोई गुनाह अपने नाल लेके चलोगे ते फिर उस दवार विचों रुकावट बन जाएगी। मुक्ति का राह यही है, होर कोई राह नहीं है। अगर जिंदे जी मुक्त होना चाहते हो ते फिर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाक पवित्र बाणी नूं समझो ते बाणी दे अनुसार जीवन गुजारना शुरू करो, फिर तुहानूं समझ आ जाएगी कि रस्ते दीआं रुकावटां की ने, ते मैं जिंदे जी मौत आउण तों पहलां पहलां मुक्त होना किवें है। अगां भगत जी कहिंदे ने, वालों निक्की पुरस लात कन्नी ना सुनी आए। ये गल तू कन्नां दे नाल सुणदा नहीं, भगत जी कहिंदे ने कन्नी ना सुनी आए। फरीदा कीड़ी, कीड़ी दा मतलब है आवाज, इनू कीड़ी नहीं पढ़ना, कीड़ी सिहारी है, कक्के दे नाल बियारी नहीं। कहन लगे फरीदा कीड़ी पवंदई, आवाजा पै रही ने, कीड़ी पवंदई खड़ा ना आप मुहाए। जिथे खलो के तू ठगे जाना है ना, लुटे जाना है, उथो सतगुरु तेनो आवाजा दे रहे ने भी इस दरवाजे विच ना जा, ए गुना ना कर, ए काम ना कर, इस तरह का जीवन ना अपने पास रख, मुहाए ठगिया जाएगा। ए आवाजा दे रहे ने, ते दे कौन रहे ने? धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी। गुरु ग्रंथ साहिब भी आवाजा दे रहे ने कि जाग रे मन जागण हारे। गुरु ग्रंथ साहिब भी आवाज दे रहे ने कि जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफल सोया, जो तन उपजिया संघ ही सोपी संघ ना हुआ। गुरु ही आवाजा दे रहे ना, पर कह लगे तू गुरु की आवाज नू सुनदा ही नहीं। फरीदा किड़ी पवंदई, आवाजा ते पै रही ने, खड़ा ना आप मुहाए। कह लगे तू फिर भी उथे खलोता है, आवाज सुन भी रहा है पर खड़ा उथे ही है, जगह बदलता नहीं। नतीजा ए होना है कि लुटिया जाएगा, ठगिया जाएगा। तो ऐसी पग
1: हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु, ए संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरू, हे शरण जोग दयाले दीना नाथ मया करू। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवै। वाहे गुरु साहिब जीओ, फरीदा दर दरवेशी काखड़ी, चला दुनिया पत बन उठाई पोटली, किथे वंजा कत। फरीदा दर दरवेशी गखड़ी, चला दुनिया पत

साईं मेरे चंगा कीता नहीं ता हम भी दज्जा आहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप सरवण कर रहे सी भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों उन्हां दे मुबारक हिरदे विचों उठे हुए वलवले और उन्हां दी मुबारक रसना दे कहे हुए बचन। भगत फरीद साहब जी दी बाणी नू बहुत ध्यान दे के पढ़िए विचारीए ते भगत फरीद साहब जी ने अपनी रसना दे नाल जो बचन कहे उन्हां बचना दे अंदर दुनिया दे बहुत सारे विषयां नू छोण दा यतन कीता। कदी किसे सलोक दे अंदर मौत दा जिकर, किसे सलोक दे अंदर जीवन दा जिकर, किसे सलोक दे अंदर गुनाहां दा जिकर, किसे सलोक दे अंदर गुणां दी गल, किसे सलोक दे अंदर पखंडवाद दी चर्चा, किसे सलोक दे अंदर परमात्मा हृदय दे अंदर है इस गल दी चर्चा। भगत फरीद साहब जी ने बहु पक्षी जीवन नू बहु पक्खां दे नाल वेख के सुधारन दा यतन कीता है। जिस भी पक्ष तो भगत जी नू कोई कमी पेशी आम दुनिया दे जीवन दे अंदर नजर आई रड़कदी दिसी उसे ही एंगल तो तमाम भगतां ने अपनी अपनी बाणी दे जरिए, गुरु साहिबाना ने अपनी बाणी दे जरिए मनुखता दी झोली दे अंदर उच्चा ते सुच्चा ज्ञान पा के मनुखता नू नवाजिया। अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा उपदेश कहन लगे फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी। दरवेश दा अखरी अर्थ हुंदा है रब दे दर दे उत्ते खड़ा हो के मंग करन वाला रब दा मंगता, रब दा जाचक। दरवेश दा अखरी अर्थ ए हुंदा है। पर आम किसे दूसरे दरवाजे ते नहीं, किसे बादशाह दे दरवाजे ते नहीं, जो परमात्मा दे दर ते खड़ा होवे और मंग भी करे केवल इको ही परमात्मा तेरे मिलाप दी चाहना है, होर कोई चाहना बाकी नहीं बचे। उनु कह देंदे ने दरवेश दर दर वेशी गाखड़ी चलना दुनिया पाता। कह लगे आम मनुखता दे अंदर विचरदियां होया नजर मैनू ए आया कि मनुखां दे नाम दे नाल लफज ते दरवेश जुड़िया या दरवेश लफज जोड़िया गया, पर उन्हां दी तरजे जिंदगी नू वेखो, जीवन दी चाल नू वेखो ते ओ आम दुनियादारां वाली चाल उन्हां दे जीवन विचों नजर पैंदी है। इत्थे मैं एक दो बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करदा चलां। अगर गुरु साहिबाना नू भगत जना नू आपां बाहरों वेखीए ते बाहरों वाकई दुनिया वर्गी चाल है, कोई फर्क नहीं है। और भगत दी चाल एक दरवेश दी चाल बाहरों रहनी भी आम दुनिया वर्गी चाहीदी है, पर अगर अंदरों वेखो ते अंदरों नरोल खुदा दे नाल मिले हुए खुदा वर्गे नजर पेंदे ने। अगर अंदरों वेखो बाहरी तौर दे उत्ते गुरु साहिबाना तो मैं गल प्रारंभ करा, बाहरी तौर दे उत्ते वेखो असीं भी गृहस्थी ते साडे दसे दे दसे गुरु साहिबान गृहस्थी। अगर गृहस्थ मार्ग नूं अख्तियार नहीं कीता ते उमर दे तकाजे दे नाल धन श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी ने गृहस्थ मार्ग नूं प्रवान नहीं कीता, इस तरह नहीं कि उन्होंने हृदय विचों प्रवान नहीं कीता, उमर दे लियाजे दे नाल उस मार्ग नूं अपना ना सके। तकरीबन पौने 8 साल दी उमर दे अंदर ते ज्योति जोत समा जांदे ने 8वें हजूर गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज। और फिर मैं एक होर भी बेनती करा, तकरीबन 22 साल दा लम्मा समा चार उदासियां दे अंदर, चार फेरियां दे अंदर
तकरीबन 22 साल दा लम्मा समा धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी घरों बहर भी रेंदे ने और आए भी जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते ने। ते फिर ए भी कोई नहीं कह सकदा कि धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे मुबारक पवित्र हिरदे दे अंदर कोई मैल दा अंश बाकी सी। मैल उन्हां दे नेड़े तेड़े नहीं है, वासना उन्हां दे हिरदे विच बाकी बची नहीं है, कोई आश कोई तरंग कोई उम्मीद उस पवित्र हिरदे दे अंदर नहीं है। उन्हां दे कोल इस मार्ग नूं अपनाउण वास्ते समां भी नहीं। मैं अज जिहड़ियां बेनतियां करनियां ने जां गुर इतिहास विचों ते जां गुरबाणी नूं आधार बना के मैं अपने कोलों कुछ भी कहण दा यतन नहीं करना, क्योंकि विषय ही बड़ा पेचीदा विषय है। तो खैर, गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे कोल समा ना हुंदिया होया वी फिर भी उन्होंने इस मार्ग नूं अख्तियार कीता, मार्ग नूं अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि आउण वाले कल नूं जो लोग मेरे मगर मगर चलदे आ रहे ने उन्हां नूं इह कहण दा समा ना मिले कि ग्रिस्त मार्ग माड़ा हुंदा है, ग्रिस्त मार्ग बुरा हुंदा है। उन्हां नूं इह कहण दा समा मिले ना, क्योंकि अक्सर असीं चलने अपने वड्डियां वडेरियां दे चिहन कदमां नूं वेखदे होए। अक्सर आपां चलने आ जिहड़े वड्डियां वडेरियां ने पूरने पाए ने, गुरु साहिबानां ने, पैगंबर जणा ने जिथे कदम टकाए ने, उन्हां कदमां दे चिन्ह वेखदे होए, मेरा मतलब उन्हां गल्लां बातां नूं मनदे होए, उन्हां नुक्तियां सिद्धांतां नूं अपनाउंदे होए अक्सर मनुख चलदे ने। अगर कोई हिंदूइज्म दे अंदर चल रहा है तो श्री राम ते श्री कृष्ण जी दी गल करके चल रहा है। अगर कोई बुद्ध धर्म दे अंदर चल रहा है तो वह गल करदा है पहला महात्मा बुद्ध दी, महात्मा बुद्ध इस तरह चलदे रहे, महात्मा बुद्ध इस तरह करदे रहे, फिर वह जीवन की चाल चलनी शुरू कर देंदा है। अगर कोई जैन मत दा धारनी बन के चल रहा है वो यही एग्जाम्पल देंदा है कि साडे महावीर जैन तकरीबन अज तो 2500 साल पहला कहन लगे वो आए ते उन्होंने इस तरह दुनिया दे अंदर मृत मंडल दे अंदर आके लोकां नूं उपदेश दिता, इस मार्ग दे पांधी बन के चले ते जैनी कहिंदे ने असीं तां चल रहे हां। हुण कोई सिख नूं पुछे भी तुसीं किस मार्ग ते चलना चाहोगे ते सिख दे कोल यही जवाब होएगा ना कि असीं गुरु नानक साहिब जी दे बनाए मार्ग ते चलांगे, होर ते कोई जवाब नहीं है ना कि गुरु नानक साहब जिस मार्ग ते चले असीं उस मार्ग ते चलांगे। फिर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ग्रिस्त दे मार्ग दे अंदर भी चले ने। ग्रिस्त दे मार्ग तो उपराम होना गुरमत दा असूल भी नहीं ते गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दा बख्शिया सिद्धांत भी नहीं। अगर कोई ग्रिस्त मार्ग नूं छड्ड के चलन दा यतन कर रहा है मैं ही कहांगा वो पहले कदम दे उत्ते भटकदा होया नजर पै रहा है, पहले कदम दे उत्ते थिड़क गया है, क्योंकि गुरु साहिबाना ने जद मार्ग अपनाया है असीं इस मार्ग नूं नफरत करनी, असीं इस मार्ग नूं माड़ा कह के इस मार्ग नूं छड्ड देना ते एक दूसरा मार्ग अपना के अपने आप नूं ज्यादा पवित्र जान लेना, दूजियां नालों महान ते अगे मन लेना, यह साडी अपनी अग्ञानता या साडी अपनी भुल है। गुरु पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रहे, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रहे, दसे गुरु साहिबान ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रहे, जिन्हें आप भगतां दी बाणी ग्रिस्ती होए ने, बाबा फरीद साहब जिन्हां दे सलोकां दी व्याख्या मैं लड़ीवार तुहाडी अरज कर रहा, बाबा फरीद साहब जी दे भी 6 लड़के ने ते 2 लड़कियां ने, 8 संतानां नूं जन्म दिता है भगत फरीद साहब जी ने, जिन्हां दी बाणी आप प्यार सहित रोज रोज सरवण कर रहे हो। फिर गुरु नानक साहब जी ने सानू ग्रिस्त मार्ग दा साधु बनाया है, ग्रिस्त तो त्यागी होके साधु बनन दा उपदेश नहीं दिता, उन्हें आख्या ग्रिस्त दे विच रह के साधु बन, मैं इस मार्ग नूं जन्म दे रहा। तो खैर, अगर बाहरों वेखिए गुरु साहिबाना नूं ते बाहरों उन्हां दे घर दे अंदर सुपत्नी, उन्हां दे घर दे अंदर तियां दा जन्म, उन्हां दे घर दे अंदर पुत्रां दा जन्म, उन्हां दी जेब दे अंदर साडे नालों धन ज्यादा, उन्हां दा घर बार साडे नालों चंगा, उन्हां दे घर दे अंदर साडे नालों पदार्थ भी वधीक, भावें संगतां ही लियांदियां ने पदार्थ भी वधीक, माया वध, परिवार कुटुंब कबीला महल माड़ियां दे अंदर वसदे होए गुरु साहिबान नजर पैणगे अगर बाहरले तौर ते वेखो।
अगर अंदरों वेखो किसी दे कोल इन्नी बरीक बीनी बरीक निगाह होवे जो पातशाह नूं अंदरों वेख सके ते अंदरों वेखोगे ओ नरोल परमात्मा दे वर्गे नजर पैणगे। बाहरों संसारी नजर पैणगे, अंदरों निरंकारी नजर पैणगे। बाहरों वेखोगे मायावी नजर पैणगे, अंदरों वेखोगे ते माया दे पति खुदावंद करीम दे नाल जुड़े नजर पैणगे। मैनू भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी का एक बचन चेते विच आउंदा है। ऐलानिया कहिंदे ने कि जाहर अंदर माइले फरजंद जन, फारसी का लफज फरजंद, फरजंद कह देंदे ने पुत्रां नूं, जन जजे दे पैर हेठ बिंदी ला के, जन जन का मतलब औरत, ते जे बिंदी ना लाओ इकला पढ़िए जन, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास। इथे जन का मतलब है सेवक, पर जिथे गुरबाणी दे अंदर आउंदा है जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर, इथे जन ते जन का मतलब हुंदा है औरत, फारसी का लफज है। भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने कि जाहर अंदर माइले फरजंद जन, गुरु साहिबाना नूं वेखो बारों बारों ते तुहानू नजर पैणगे कि उन्हां दे कोल जन वी है, जन का मतलब औरत, उन्हां दे कोल फरजंद ने, फरजंद का मतलब उन्हां दे शहजादे उन्हां दे साहिबजादे। पर कहन लगे दर हकीकत बा खुदाए खेस तन, कहन लगे हकीकत उन्हां दी ए नहीं है जो उन्हां नूं बाहरों वेख रहे हो। ते भाई नंद लाल साहब फिर उन्हां दी हकीकत है कि हकीकत विच नजर आ रहा है कि परिवार है, कुटुंब है, कबीला है, धीआं ने, पुत्र ने, तन है, दौलत है। तुसी कह रहे हो सतगुरु साहिबाना दी ए हकीकत नहीं, सच्चाई नहीं। ते फिर हकीकत दे अंदर की, अगली पंक्ति विच भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने दर हकीकत बात खुदाए खेस तन, अगर कोई उन्हां नूं बारीक बीनी दे नाल अंदरों वेख सके ते अंदरों नरोल खुदा वर्गे नजर पैणगे। दर हकीकत बा खुदाए खेस तन, अंदरों रब वर्गे नजर पैणगे। अज दे महावाक दे अंदर भगत जी कहिंदे ने फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी, कहन लगे रब दे दर दा अगर दरवेश बनना है ते सौखी कार नहीं है। कहन लगे गाखड़ी, गाखड़ी दा मतलब बड़ी कठिन खेड है, आम खेड नहीं है। जितनी मंजिल महान होवे उस मंजिल दी प्राप्ति वास्ते साधना भी उन्नी महान करनी पैंदी है। अगर पदार्थ तुच्छ है, मंजिल तुच्छ है, ते उदी प्राप्ति वास्ते साधना भी तुच्छ दी करनी पैंदी है। आम साधना आम मेहनत करन तो बाद ओ मंजिल ओ पदार्थ हाथ विच आ जांदा है, क्योंकि पदार्थ दी कीमत बड़ी घट है। ते पदार्थ जिस पदार्थ दी कीमत थोड़ी उदी प्राप्ति वास्ते उन्नी मेहनत भी थोड़ी। जिहड़ा पदार्थ अपने आप दे अंदर महान है, जिहड़ी मंजिल अपने आप दे अंदर महान है, महान मंजिल दी प्राप्ति वास्ते प्यारे मेहनत भी महान ही करनी पैंदी, आम मेहनत दे नाल गल नहीं बनदी। अगर किसी ने दो अखर पढ़ने हो ना, ए बी सी डी चार अखर पढ़ने हो ना, वो एक अद्धे दिन दे अंदर सीख सकदा है, अनजान तो अनजान बंदा भी सीख सकदा है। पर किसी ने पढ़द्या पढ़द्या डॉक्टर की डिग्री लैनी या इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उन्हों ते एक दिन की मेहनत दे नाल डिग्री नहीं ना मिलन लगी, उन्हों ते एक मेहनत दे दौर विचों दी गुजरना ही पैना है। उन्हों एक मेहनत साधना दे दौर विचों दी निकलना पैगा, क्योंकि उदी मंजिल महान है। परमात्मा सब तो महान है, श्रेष्ठ है, ते परमात्मा दी प्राप्ति वास्ते फिर सानू एक मेहनत दे दौर विचों दी गुजरना पैंदा है। मेहनत का दौर भी बड़ा कठिन है, आम नहीं है। असी करदे कियां रब दी चाहत वास्ते अपने तन नूं धर्म दे मार्ग दे उत्ते तोर लैने आ, ते मन साडा धर्म दे मार्ग दे अंदर तुरदा नहीं है। फिर मैं बेनती करा, तन नूं धर्म दे मार्ग दे उत्ते तोर लैने आ, ते मन साडा धर्म तों बागी हुंदा है, मन नूं असी धर्म दे मार्ग दे उत्ते तोरदे नहीं। धर्म दी दुनिया दे अंदर तन दी साधना नालों करोड़ गुणा अगे है मन दी साधना। और फिर मैं बेनती करा, गुरबाणी नूं पढ़ के वेख लो, एक ओंकार तों लै के अखीर तक जिहड़ी गल चलदी है ना गुरबाणी दे अंदर, ओ मन दी चलदी है। तुसी बदलना अपने मन नूं है,
बदले हुए मन वाले दा नाम बनदा है गुरमुख। हुण एक मनमुख होवे एक गुरमुख होवे ते दोनां दे शरीर नूं पैरलर बराबर बराबर खड़ा करके वेखो तुहानूं शरीरक बनतर दे अंदर अंतर पएगा नजर आएगा भई इहदे अंदर कोई फर्क है इहदे अंदर कोई फर्क है। दोवां दे अंग प्रतंग तकरीबन बराबर ने दो ही नेत्रां दा मालक मनमुख है ते दो ही नेत्रां दा मालक गुरमुख है। एक जीवा दो पैर दो कान नक मूह मथा चमड़ी शरीर सब कुछ मनमुख दे पास है। यही अंग प्रतंग सारे दे सारे एक गुरमुख दे पास ने। बारो अंतर की बारो कोई अंतर नहीं। हां कत काठ का अंतर ते गुरमुख मनमुख दे अंदर हुंदा है ते वो गुरमुख मनमुख होण करके नहीं उते आम किसे दा कद छोटा किसे दा वड्डा किसे दी चमड़ी दा रंग काला किसे दा चिट्टा ए फर्क आम फर्क है। बेनती मैं ए कर रहा सा कि मन जदों अंदरों बदलदा है ते मन दी दशा बदलन दे नाल तुहाडे नां दे नाल एक लफज जुड़ जांदा है ए बंदा बड़ा गुरमुख है। जदों तुहाडा मन बदलदा है ते अंदरों ना बदल जांदा है लोकां दे अंदर ना प्रचलित हुंदा है ए भगत है ए दरवेश है ए फकीर है ना बदलदा है और ना बदलदा कदों है जदों पहला साडा मन बदलदा है। तुहाडे सामने मैं इतिहास विचों एक होर बेनती करा जिस तुलंबे नगर दे अंदर चलदे चलदे धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी पहुंचदे ने तो लंबे नगर दे अंदर रहिंदा है एक शख्स इनू लोग ना करके बुलाउंदे ने सज्जन ठग क्योंकि ठगी करना एदा कम है ठगी करना एदी किरत है ए करदा है ठगियां राह मार है लुटदा है सेवा करदा है लोकां नूं मार देंदा है मुका देंदा है ते उहनां दा माल असबाब लुट के अपने घर विच रख लैंदा है। लोग रोकदे ने बाबा इधर ना जाए इधर एक सज्जन ठग नाम दा आदमी रहिंदा है जो किसे नूं बख्शदा नहीं है ठग ही लैंदा है मार ही देंदा है। पर जिस दिन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दी संगत होई उस दिन तो बाद ते ओह सज्जन ठग नहीं रहा सज्जन गुरमुख बन गया। पर हुण सज्जन दा कद ते नहीं बदलिया ना उहदा चिहन चक्कर बदले ना अखां बदलियां ना चमड़ी दा रंग बदलिया ना नक्शो निकार बदले। बदलिया की है सज्जन अंदरों बदलिया अंदर दी बदलाहट दा ना ही मनमुख है अंदर दे बदल जान दा ना ही गुरमुख है। इस बेनती नूं बड़े ध्यान नाल समझ लेना अंदर बदलन करके ना ठग है अंदर बदलन करके ना सज्जन है। अंदर बदलन करके लोग चोर कह देंदे ने अंदर बदलन करके लोग साधु कह देंदे ने जो अपने अंदर नूं बदलदा है। जिन्हों आपां दरवेश कहने आ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਤੀ ਲਾ ਲਵੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਸਜਾ ਲਵੇ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ 18 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਲੋਕ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸੇਗਾ ਹਿੰਦੂ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਵਾ ਲਵੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਰੱਖੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਚਲੀਏ ਕੱਟੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 5-7 ਜਲਾਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ
ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਬਾਣਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮ ਸੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਜੋ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਿਕ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ ਜਿਉਂ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਡਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ ਬਹੁਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੀਜ, ਫਸਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਖੇਤ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਾ ਫੂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਸੋਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਕਿ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਡਰਦੇ ਰਹਿ, ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਤੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਤਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਨਾਵਟੀ ਅੰਗ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਲੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਝ ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਤਲਾ ਪਰ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਨਿਰਜੀਵ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਤਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਿਕ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ ਜੋ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਡਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਉਣਾ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਰਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਰਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਦਿਲ ਦਰ ਵਾਣੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਿਲ ਦਰ ਵਾਸ਼ੀ ਰਾਸ,
दिल दरवेशी रास इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। दिल दरवानी जो करे दिल दरवेशी रास, कहन लगे जो अपने अंदर दी रखवाली करदा है। मैं फिर बेनती करा अंदर दी रखवाली, मन दी रखवाली। मन मेरा काम वाल ना जाए, मन मेरा निंदा वाल ना जाए, मन मेरा झूठ वाल ना जाए, मन मेरा बुराइयां वाल ना जाए, मन मेरा लोभ दे अंदर मस्त ना रहे, मन विच कोई बुराई ना रहे। गुरबाणी दा वचन है, दिल दरवानी जो करे। दरवानी दा मतलब राखी करना, जो अपने अंदर दी राखी करदा है। दिल दरवेशी रास ते फिर मन करके राह दे उते चल रहा है, ते चल केड़े राह दे उते रहा है, जेड़ा राह निरंकार दे घर नूं जांदा है ओ राह मिलदा कित्थों है? तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचना विचों, जो अपने अंदर दी राखी कर रहा है और जो रब जी दे राह दे उते सही ढंग दे नाल चल रहा है, गुरबाणी ए कहिंदी है ओदा इश्क मुबारक है, उदा लेखा करते दे पास है। मतलब करता उनु अंदरों जानदा है, ते करता पुरख वाहिगुरु दी ओ रहमत दा पात्र भी बन जाएगा, ओ करता पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश दा पात्र अवच बनेगा। एक वचन मैं भगत फरीद साहब जी दे तुहाडे सामने होर रखना चाहवांगा। ओ कहिंदे ने फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे प्रांद। भगत फरीद साहब जी दा वचन, कहन लगे फरीदा साहिब दी कर चाकरी। चाकरी मैंने सेवादारी कर, चाकरी मैंने नौकरी कर, चाकरी मैंने गुलामी कर। कहे कबीर गुलाम कर का जी आए पामे मार। भगत जी कहन लगे साहिब दी कर चाकरी, अपने साहिब दा तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा चाकर बना। ते चाकर बनन दा मतलब है गुलाम बना। गुलाम दा मतलब है जो हुक्म गुरु कहन उस हुक्म नू मनना है। कोई उक्ती कोई युक्ति कोई अपील कोई दलील कोई किंतु कोई विंतु लेकिन वेकिन करन दी लोड ना होए। गुरु ने कह दिता है कम करना है ते करना है, उहदे अगे अपील दलील करन वास्ते मन कोई प्रश्न उठाए ना। आखिया साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे प्रांद, अपने अंदर जेड़ी लगी हुई मैल है ना मैल नू ला। काम क्रोध लोह मोह निंदा चुगली ईर्षा बखीली ठगी ठोरी हेरा फेरी तरह तरह दा बुरा सोचना बुरा चितवना बुरा करना। कहन लगे ओ अंदर दी मैल नू ना बाहर कर दिल दी लाहे प्रांद। अगला बचन कहन लगे दरवेशा नू लोड़िए रुखां दी जी रांद। दरवेश ओ है जिदा जिगरा जिदा रिदा विशाल है। ते किस तरह दा विशाल है? भगत फरीद साहब एग्जाम्पल दे रहे ने रुखां दी जी रांद, जिदा जेरा जिदी बर्दाश्त ताकत एक रुख वर्गी। रुख नू लोग पत्तियां नू तोड़न ता नहीं, फुलां नू तोड़न ता कोई नहीं, जे कोई फल कच्चा तोड़ लवे ता कोई नहीं, फल पक्का तोड़ लवे ता कोई नहीं। फल तोड़न लग्या कदी कदी बच्चे रुख दी टहनी तोड़ के रख देंदे ता कोई परवाह नहीं। कदी कदी लोहार आरी लेके चला जांदा है उनू कटना शुरू कर देंदा है ते ता कोई नहीं। मैं मारू राग दे अंदर साहिब श्री गुरु नानक साहब जी दा एक बचन पढ़िया ते पढ़ के हैरान होया कि पातशाह दरवेश इनू कहिंदे ने, असीं ते गलती दे अंदर खड़े हां। हजूर कहन लगे शस्त्र तीखण, तीखण मैंने तिखे, शस्त्र मैंने हथियार, शस्त्र तीखण काट डारियो मन ना कीनू रोस। रुख दी गल कर रहे ने गुरु नानक साहब ते रुख दी गल कर रहे ने भगत फरीद साहब। भगत फरीद साहब कहिंदे ने दरवेशा नू लोड़िए रुखां दी जी रांद, ते इधर गुरु नानक साहब जी रुख वास्ते कह रहे ने। कहन लगे शस्त्र तीखण काट डारियो मन ना कीनू रोस। तिखे शस्त्रां दे नाल आरी दे नाल कटन वाले ने ना उनू टुकड़े टुकड़े कीते, उदे फटे बनाए, उनू जड़ दिता, उदे तन बदन दे अंदर किल कांटा ठोकिया, उदी एक बेड़ी बनाई। ते आखिया जिन्ने बेड़ी बनाई है जिन्ने कटिया है उस रुख दा दिल वेखो उस कटन वाले नू नदी तो पार लेके जा रहा है, उनू डोबदा राह विच नहीं। दरवेश दी तबीयत दरवेश दा हिरदा दरवेश दा अंदर इस तरह दा होना चाहिदा। हजूर कहन लगे शस्त्र तीखण काट डारियो मन ना कीनू रोस।
काज ऊआ को ले सवारियो तिल ना दिनो दोष। ओनु तिल जिन्ना दोष नहीं दिता भी तू मेनू कटिया तू मेनू वटिया तू मेरे अंदर किल ठोके तू मेरी बेड़ी बनाई मेरा रूप विगाड़िया ते मैं सजना तेनु दरिया तो पार लेके जाना नहीं तेनु डोबांगा ते डोबांगा दरिया दी लहर दे अंदर ओदा तिल पर दोष नहीं। फिर जदों मैं पढ़दा गुर इतिहास ते गुर इतिहास पढ़द्या पढ़द्या रोंगटे खड़े हो जांदे ने कि दरवेश हुंदा कौन है दरवेश कहना किन्नू चाहिदा है। निकलदे ने घरों जगत जलंदे नू ठारण वास्ते और नाल लेके निकलदे ने अति सत्कार योग भाई साहब भाई मरदाना साहब जी नू जगत नू तारण वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी ते जगत ने चुक चुक के सलामा भी कीतियां ने ते जिथे सलाम करन वालियां दी कतार खड़ी सी उथे नाल गुरु नानक साहब जी नू मंदे बोल बोलन वाले इटा वटे मारन वाले कोचे ते कमले बोल बोलन वाले उन्हां दी लैन भी बड़ी वड्डी सी कोई छोटी नहीं सी। सारियां ने गुरु नानक साहब जी नू सिजदा नहीं कीता सारे पातशाह दे सामने नहीं चुके और इकल्ले गुरु नानक साहब नहीं कबीर साहब नू सारा बनारस कहिंदा रहा है कबीर बौरा कबीर बौरा कबीर बौरा सारे कहिंदे रहे। नामदेव साहब नू मंदिर विचों धक्के रविदास साहब जी दे नाल वधीके सरमद सूफी फकीर दे नाल वधीके। खैर मैं किन्नियां इतिहास विचों एग्जाम्पलां तुहाडे सामने लिया के रखा गुरु नानक पातशाह नू बगदाद दे अंदर एक जगह ते एक खूह दे अंदर धक्का दे दिता सी खूह दे अंदर पर जिन्हों धक्का दिता है वह बिलकुल शांत हृदय दे मालक ने ते बाहर निकल के भी शांति दा उपदेश कर रहे ने पर जिन्ना ने धक्का दिता है वह कलपदे हुए रोंदे हुए कुरजदे हुए हजूर दे कदमी पेंदे ने बाद विच अपनी भुल दी खिमा मांग के। गुरबाणी फैसला साडे सामने रख रही है कोई आखे भूतना को कहे बेताला जगत दे भूत ने लाउण वास्ते आए ते लोकां ने गुरु नानक साहब जी नूं कह दिता है आ भूतना है को कहे भूतना कोई आखे भूतना को कहे बेताला। बेताल जो साज ताल विच ना होवे हारमोनियम ताल विच ना होवे बजाउण वाले दा सुनन वाले दा रस नहीं गुरु के कीर्तनीय निक्की जी हथौड़ी दे नाल जोड़ी नूं ताल विच करदे ने तुहाडे सामने जोड़ी दे पुड़े नूं कदी चढ़ा देंदे ने कदी ला देंदे ने सुर ताल विच करदे ने जोड़ी ताल विच ना होवे बजाउण ते सुनन वाले दा आनंद नहीं। सरंगी रबाब सरंदा कोई भी साज अगर ताल विच है सुर विच है ते ओदे विचों राग दा जन्म हुंदा है गाउण वाले बजाउण वाले सुनन वाले दा आनंद बनदा है ते जे ओ साज सुर ताल विच ही नहीं ते ना बजाउण वाले दा आनंद ते ना श्रोते दा आनंद सुनन वाले दा आनंद। आए सन बेताले जगत नूं ताल करन वास्ते बेसुरे जगत नूं सुर विच करन लई ते लोकां ने कहा बेताला कोई आखे पूतना को कहे बेताला कोई आखे आदमी नानक बेचारा पया दवाना शाह का नानक बौराना पातशाह दी बाणी दे अंदर आ बचन आउंदे ने। कोई मस्ताना कहिंदा है कोई दवाना कहिंदा है कोई बेताला कहिंदा है कोई पूतना कहिंदा है कोई दस्तगीर वर्गे इटां वट्टे मारन लई आ जांदे ने पर दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जी रांद गुरु नानक साहब जी दी मुबारक रसना तों किसे दे विरोध दे अंदर एक कौड़ा फिक्का बोल निकलदा किसे ने नहीं सुनिया। इटां वट्टे मारन वाले तुहाडी कुल नास हो जाए ये बचन पातशाह ने नहीं कहे। जेड़े मेनू मंदा बोल रहे हो लोग तुहानू मंदा बोलन ये बोल नहीं कहे। जिन्हां ने मंदा बोलिया पातशाह उल्टा उन्हां दा भला कर दे रहे ते मैं ते इतिहास दे पन्ने पढ़ के एक बारी हैरान होया भाई साहब भाई मरदाना जी कर देंदे ने प्रश्न वो कह देंदे ने बाबा असी इन्हां लोकां दा भला कर रहे हां अपना घर छड्डिया परिवार छड्डिया तियां पुत्तर छड्डे बच्चे छड्डे गुरु नानक साहब भी गृहस्थी ते भाई मरदाना साहब भी गृहस्थी उन्हां दे भी दो साहिबजादे ने भाई रजादा जी ते भाई सजादा जी। गुरु नानक साहब जी दे दो साहिबजादे ने बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास जी। आखिया आपां घर बार छड्डिया मां बाप छड्डे तियां पुत्तर छड्डे आए आ इन्हां दा भला करन लई ते उल्टा सानू मंदा बोलदे ने उल्टा सानू गाली गलोच करदे ने।
मुस्कुराउंदिया होया कहन लगे मर्दानिया जदों कोई पागल बंदे दा वैद जां डॉक्टर इलाज करदा है ना ते ओ पागल डॉक्टर नू वैद नू मंदा ही बोलदा है क्योंकि होया जो पागल समझदार ते होया ना अगर समझदार दा इलाज होवे समझदार ते करेगा धन्नवाद जेड़ा बंदा है सूझ सियाणप रखण वाला ओ ते कहेगा तुहाडा शुकराना है तुसी ए चंगा उपदेश मेरी झोली विच पाया है पर जेड़ा अति मूड अति पागल है ओ मारन वास्ते आएगा इन्हे सच दी गल कीती क्यों है ओ हथियार चुके आ जाएगा एदा गला बंद करो एदा बोलना बंद करो। गुरु नानक साहब जी नाल इस तरह हुंदा रहा। गुरु नानक साहब कहन लगे मर्दानिया जदों कोई वैद पागल दा इलाज करन लई जांदा है ते ओ मंदा ही बोलदा है उस वैद ते कदी कदी ओ हथी वी पै जांदा है ते वैद अपना गुण ना छड्डे ओ तां ही चंगा वैद है ओ तां ही सुगड़ ते सुजान वैद है ते जे उस पागल दा इलाज करदा करदा अपने गुण नू ही गवा पवे ते फिर ओ वैद कादा होया। लोग कहणगे ओ ते है पागल पर तू ते वैद है ना तेरे कोल ते गुण है। तो खैर भगत फरीद साहब जी कहन लगे दरवेशां नू लोड़ी रुखां दी जी रांद। एक बेनती मैं इस संबंध दे अंदर होर भी करदा चला। दरवेश लिबास पा के बनना बड़ा सौखा है बाहरों बनना इनू मैं दूजे लफजां दे राही बयान करा। लिबास पा के दरवेश अखवाउणा लोकां दे कोलों बड़ा आसान है ते अंदरों मन करके दरवेश बन जाना ओना ही कठिन है ओना ही महान है। जिन्ना जल्दी तन धर्म की दुनिया विच चला जांदा है ना उन्नी जल्दी मन धर्म की दुनिया विच नहीं जांदा ते जिहदा मन धर्मी बने ही ना मन धर्म नू कबूल करे ही ना मन धर्म दे नेम नुकते अपनावे ही ना वह बाहरों किस तरह का पहरावा बनाई रखे कुछ अखवाई जावे वह कादा दरवेश होया। हां लोग तेनू लख सलामा करन पर खुदावंद करीम दे घर दे अंदर परवान नहीं पएगा क्यों क्योंकि गुरु तेरे अंदर दा सुधार मंगदे ने गुरु तेरे मन दा सुधार मंगदे ने ते मन दा सुधार करन लई गुरबाणी दा उपदेश है। अगा भगत जी कहन लगे फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत मैं वेख्या लोग चल रहे ने आम दुनिया दारा वांग। किवें चल रहे ने दुनिया दारा वांग इह ते बेनती मैं कर ही चुका ना कि बाहरों दरवेश ने चलना ही दुनिया वांग है। बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो गृहस्थी होवे बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो तियां पुत्रां दा पिता होवे बाहरों दरवेश होवे जिहदे घर दे अंदर पत्नी होवे बाहरों दरवेश ओ है जो अपने महल माड़ियां दे अंदर रसदा वसदा होवे पर ओ दरवेश केवल बार बार दा अंदरों दरवेश ओ है जो सच दे नाल जुड़िया होवे बुराइयां तो बचिया होवे गुणां दी माला परो के अपने मन दे अंदर वसाई होवे अंदरों दरवेश हो। चलना दुनिया पत बाहरों ते चलना है दुनिया दारा वांग अंदरों वखरे होके चलना है अंदरों दुनिया दारा वांग नहीं चलना। अंदर दुनिया चुगली निंदा ईर्ष्या दी भरी है पर दरवेश दे अंदर ना चुगली ना निंदा ना ईर्ष्या होवे। अंदरों दुनिया दे अंदर खोट है पर दरवेश दे अंदर कोई खोट ना होवे। अंदरों दुनिया दे अंदर अगर मन करके वेखिए ना आम दुनिया नू ते दुनिया दे अंदर कोई अपना है कोई बेगाना है जेड़े अपने ने उना नू प्यार जेड़े बेगाने ने उना तो नफरत पर जेड़ा दरवेश है ओदी दुनिया दे अंदर सारे अपने ने ओदे वास्ते कोई बेगाना नहीं है ओदे वास्ते सारे ही अपने ने ओदे मन दे अंदर सारे वास्ते जगह होवे। कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं कोई यहूदी नहीं कोई बोधी नहीं कोई पारसी नहीं ते जड़ा बड़ी सोच नू सीमित करके चल रहा है बड़े छोटे दायरे वे चल रहा है खिमा चाहवांगा ओ सच्चा दरवेश जिस तरह का गुरु नानक साहब जी ने बनाया है उस तरह का दरवेश नहीं होएगा। जे गुरु नानक साहब जी का उपदेश है सारियां लई सांझा खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वरना को सांझा ते रब दे सच्चे दरवेश का उपदेश भी चौं वरना लई सांझा है। ओदे निगाह दे अंदर कोई बेगाना कोई अपना नहीं कोई इलाके की नफरत नहीं कोई अपनी जथेबंदी की नफरत नहीं फिर ओदे लई भी सारे बराबर ने। भगत जी कहन लगे बन उठाई पोटली किथे वंजा कत। ए जिहड़ी बुराइयां दी पोटली आम लोग सिर दे उत्ते रख के चल रहे ने
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਕੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੁਨੱਖਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਕੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਖੁਦ ਨਾ ਸਮਝ ਪਵੇ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਲਾਬਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਛੱਪੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਂ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।
हस्त अलंबन देहु प्रभ करतो उदर गोपाल मोह निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी तिस राखो हो किरपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीओ किजना बूजै किजना सूजै दुनिया गुजी पा साईं मेरे चंगा कीता नाही ताहा हम भी दजा आहे फरीदा जे जाना तिल थोड़े

इच्छा रहे आ दूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग, मेहरवान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निघी गोदा आनंद मान रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकागर करके गुरु दरबार विच बैन अते सुनन दी किरपालता करियो। एक नुकता हमेशा ध्यान दे अंदर रखन योग है

इच्छा रहया दूर। देख फरीता जेथिया सकर होई बिस, साई बाजों अपने वेदन कहिए किस।

रंग नवेला होए महला तीजा फरीदा काली तौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया पिरम ना लगई जे लोचे सब को एहु पिरम प्याला खसम का जय पावे तैं दे फरीदा जिन लोयन जग मोहया से लोयन मैं डिठ कजल रेख ना सहंदया से पंखी सुवे बहिठ फरीदा कुकेंदिया चांगेंदिया

जवानी है केवल अपने दुनियावी धंधे करने लिए, काम काज करने लिए। बुढ़ापा आएगा ते बुढ़ापे दे अंदर वेखी जाएगी, रुसे रब दा उलामा ला लवांगे बुढ़ापे दे अंदर जाके। अक्सर इस तरह कहिंदा अजे जवान आ, अजे मेरे काम कार करने वाले बाकी ने, मेरा कारोबार करना, मेरे तिया पुत्रा दा व्याह कारज करना, सारे ते फर्ज बाकी ने। ए काम या वेलिया दा है ते या बुढ़ापे दा है। ते मैं अक्सर एक बेनती करया करदा कि चलो बुढ़ापे विच आए हो पर फिर ही गुरु दे मुताबिक चल के इत्थे आ जाओ। फिर भी बंदा अपनी मर्जी नूं नाल लैके आउंदा कि जितने बजुर्ग वार गुरुद्वारे विच आउंदे ने, मंदिर मस्जिद विच जांदे ने, ओह कोई गुरु दी मत दे अनुसार जा रहे ने। ते जे जा रहे ने ते फिर कोई बुढ़ा गुनाहगारी नहीं चाहीदा, खिमा मंग लवां बड़े गुनाहगारी मिलदे ने। कदी कदी बजुर्ग बोलदा है तो गल इस तरह की करता है जिवें महा बचकाना होवे, बच्चियां वाली गल हुंदी है। कारण की है, अजे भी अपनी मर्जी दे मुताबिक आ रहा है, बने सुभा दे मुताबिक आ रहा है। कारज ते सारे पूरे हो गए ने, फर्ज ते अदा हो गए ने, पर आ अपनी मर्जी दे मुताबिक ही रहा है। गुरु की मर्जी दे मुताबिक अजे आउण दी जाच इहनूं नहीं आई। तो कह रहे ने काली जिनी ना रावया, वाल काले सन जवानी दा समा सी, परमात्मा नूं रावया ने, परमात्मा चेते आए ने। चेते की आया, तन धर्म चेते आए ने, परिवार चेते आया, निरंकार चेते आए ने। जवानी दे अंदर बंदा दूर भजन दा यतन करदा पर भज के जाएगा किथे। जद अगों अजगर वांग दुख मुंह फैला के सामने आ जांदे ने, फिर तेनू वापस आना पैंदा है इत्थे। इथे आण के नक गोडा रगड़ना पैदा है, क्योंकि अगे दुख खड़े ने दीवार बन के, उन्हां नूं लंघ के पार जाना अपने वस विच नहीं है। फिर चेता आ जांदा है कि रब भी कोई चीज है, वरना रब नूं इह हउआ ही मनदा है, रब नूं मनन लई तैयार ही नहीं हुंदा। कहन लगे काली जिनी ना रावया, तौली रावे कोए, वालां दा रंग चिट्टा होया। ते कहन लगे मैं वेख्या है तौली रावे, रावे मैंने मिलना। कह लगे कोए, कोई विरला विरला बजुर्ग ही इस राह दे उत्ते चल रहा है। हुण जितने बजुर्गो, मैं तुहाडे उत्ते एक प्रश्न करना चाहुंना, उस तो पहला खिमा मंग लवां कि आप रब दी प्यास लेके गुरुद्वारे आ रहे हो या समा पास करन लई गुरुद्वारे आ रहे हो? घर दे अंदर समा पास नहीं हुंदा, गुरुद्वारे समा पास हो जाएगा। अगर समा पास करन लई आए हो ते समा पास ही होएगा, इत्थों मिलेगा कुछ नहीं, खिमा करियो। अगर आप ए लक्ष्य लेके, मनोरथ लेके आए हो कि गुरु नूं मिलना मेरा फर्ज है, मनुख दा एक कर्तव्य है, ते चलो जवानी बीत गई है ते मैं बुढ़ापे दे अंदर उन्हूं रिझा लवां, उन्हूं पा लवां, फिर तुहानूं करोड़ वार नमस्कार ते तुहाडा आउणा भी मुबारक। पर मैं वेख्या है समय पास हुंदा है। फिर जितने को बजुर्ग चल के गुरुद्वारे आउंदे ने, उन्हां दी गिनती ते बड़ी थोड़ी। घरां दे अंदर बजुर्ग वार है ते बड़े, पर मैं उन्हां बजुर्गां नूं वेख्या है अजे भी विशियां विकारां दे अंदर मस्त, अजे भी विशियां विकारां दे अंदर। जे किसे जवान ते प्रश्न करिए भी गुरु वाला बन, अमृत छक, गुरबाणी दे नाल जुड़, बाणी पढ़िया कर, उह कहिंदा जी कारज करन वाले बाकी ने, इह काम बुढ़ापे विच। ते जे बजुर्ग ते सवाल करिए भी हुण तूं अमृत क्यों नहीं छकदा, ते आप जवाब दिओ कि हुण अड़चन किस गल दी। बजुर्ग मतावां, बजुर्ग वार, जे तुहाडे विचों अजे भी कोई गुरु वाला नहीं बनदा ते हुण अड़चन किस गल दी है? हुण ते कोई अड़चन नहीं है। फिर एक बेनती मैं होर करदा चला। मेरे उत्ते कल एक बजुर्गा ने प्रश्न किया सी, इस वक्त भी उह संगत दे अंदर सुभाए मान ने, कल शामां नूं मेरे उत्ते उन्हां ने प्रश्न किया सी, अमृत छकन दी तमन्ना है पर परिवार मेरे नाल सहमत नहीं है। मैं उचेचे तौर ते बेनती करदा चला, तन सांझे तौर दे उत्ते सारिआं नूं लाभ देंदा है पर धर्म इस तरह नहीं है। इत्थे मैं गल नूं थोड़ा खोलदा चला, तन परिवार दे अंदर आ रहा है पर एक मैंबर दे जरिए आ रहा है। मन लो तन कमा के लिया रहा है पिता, उस धन कमाए दे नाल सारे परिवार दे मैंबरां नूं लाभ मिल रहा है। धन दे नाल भोजन बनिया, सारे खा रहे ने, धन दे नाल कपड़ा आया, सारे हंडा रहे ने, धन दे नाल मकान बनिया, सारे उस मकान विच रह रहे ने, पर कमाया ते सारिआं ने नहीं, कमाया इक ने। उस धन दे नाल होर तरह तरह दे पदार्थ घर विच, साजो समान घर विच लियांदा गया।

फरीदा थियो पवाही तब जे साईं लोड़ें सब एक छिज है बिया लताड़िया है ता साईं दे दरवाड़िया है। फरीदा खाक ना निंदिया है खाकू जेड़ ना कोई जीवंदियां पैरां तले मुयां उपर होए। फरीदा खाक ना निंदिया है

कोई दूसरा तो नहीं जानता। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानता तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हैं, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है, नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने ओह साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है। लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हां, मनमुख हां, ये मैनू खुद नूं पता है ते या सतगुरु साहब जी नूं पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पता है। खैर मैं एक बेनती करदा ही चलना, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रे, पत्नी दे सामने हो रे, धी दे सामने हो रे, समाज दे सामने हो रे ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोग समाचार है, इहदे अंदर भावे गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। ये जानदा है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर ये मेरा विशा नहीं सी। अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जांदी है उहदा नाम अपराध। बस एक नुक्ता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने, दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने, मुढ़ तो उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवें आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो, फुल नवें आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो, फल फिर समा पा के नवें आ जांदे ने, टहणियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहणियां कटदे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीआं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहणी नूं कट रहे हो दूजी नवी जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगे ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करदे ने, कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सर्फ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें?

निर्वतरी न पुछई तन्न सुहागन नाओ सहरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पा

कंतय गम्यथ नानक सो सोहग्नि जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निकी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। पहला एक बेनती नूं समझन दे यतन करो कि इस दुनिया दे अंदर औरत दा जामा ते भावें मर्द दा जामा है। जदों चर्चा परमात्मा दी चले उदों परमात्मा दे सामने आपां सारे नार दे रूप विच आ ते परमात्मा पति दे रूप विच है। इस जग में है पुरख एक है होर सगली नार सबाए। इत्थे जामे दा फर्क नहीं कि जामा औरत दा है जामा मर्द दा है। उपदेश ही कली औरत नूं है मर्द नूं उपदेश नहीं, उपदेश सांझा है। गल परमात्मा दी चल रही है इस करके भगत फरीद साहब परमात्मा नूं कंत कहिंदे ने, अपने आप नूं नार कहिंदे ने। वैसे भी तुहाडे ज्ञात लई मैं बेनती करदा चलां गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो। गुरबाणी दे अंदर किधरे परमात्मा नूं मां, किधरे पिता, किधरे पुत्र, किधरे भाई, किधरे बंधु कह के बुलाया गया सत्कारिया गया। किधरे किधरे गुरबाणी दे अंदर परमात्मा नूं मालक ते स्वामी कहा गया, गोपाल कहा गया। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे संबंध विच कबीर साहब इस तरह भी कहिंदे ने, कहे कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। परमात्मा मैं तेरे दर दा गोला गुलाम हां और तेरी गिरफ्त विच हां, हुण मर्जी तेरी है तू मैनू जिंदा रखे तां भला है, तू मैनू मार देवे मेरा तां वी कोई इतराज नहीं। उत्थे अपने आप नूं गोला ते परमात्मा नूं मालक मन रहे ने। सूफी संतां ने तकरीबन तकरीबन परमात्मा नूं महबूब जानिया और अपने आप नूं महबूबा दी जगह दे उत्ते मन्निया है। तकरीबन सूफी संतां दा किरदार इस तरह दा है, परमात्मा नूं महबूब मन्नदे ने, अपने आप नूं महबूबा मन्नदे ने। तो जद परमात्मा महबूब है तो फिर लफज भी उस तरह दे वरतों विच लियाउणे पैणगे। भगत फरीद साहब जी ने लफज बयान किते अज न सुती कंत स्यों, कंत मैने परमात्मा, कंत दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा है पति, ते साडा पति कौन है परमात्मा। अज मैं पति परमात्मा दा मलाप नहीं जानिया, पति परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। जीव इस्त्री परमात्मा दे संबंध विच कह रही है अज मैं परमात्मा दी नेड़ता नूं मन करके नहीं पा सके। ते परमात्मा दे नेड़े तन ते हुंदा नहीं, हुंदा ते मन। परमात्मा दे मलाप दा आनंद मन नूं मिलना है। मन ही परमात्मा पति दी शेज दे उत्ते जाएगा, तन दा जाना ही बड़ा मुश्किल। तन किवें लैके जाओगे, तन ने ते मर भी जाना है, मुक भी जाना है, तन बिरध भी हो जाता है, तन सड़ भी जाता है, तन पसम भी हो जाता है। जाना मन ने है परमात्मा दे दर दे उत्ते। अज मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ पाया। जोड़दा समय रोज रोज सुबह तो शाम तक परमात्मा दे नाल अल्लाह दे नाल अपने मन नूं, अज किसे कारण दे करके मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया। मैं परमात्मा दे नाल सौ नहीं सकिया। सौन दा मतलब है मिलना। अंग मुड़े मुड़ जाए
मेरे सारे शरीर दे अंदर बेचैनी है, मन दे अंदर बेचैनी है। ते बेचैनी किथे बनदी है? मन दे अंदर। मिलाप दा रस किथे बनदा है? मन दे अंदर। मिलन वाला कौन है? मन। अज मेरे मन दे अंदर बेचैनी है। बेचैनी किस गल दी है? क्योंकि जो परमात्मा रोज रोज मिलदा सी उनु मिलन करके कोई ना कोई नवा रस जीवन दे अंदर रोज बनदा सी, नवा रस रोज पैदा हुंदा सी। अज परमात्मा दा मिलाप भी नहीं हो सकिया, किसे कारण मैं परमात्मा नु आराध नहीं सकिया, अज ओ रस भी नहीं बनिया। ते रस नहीं बनिया ते मन दे अंदर चिड़चिड़ापन ते क्रोध दा जन्म होया। ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜੇਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਸ ਰੋਜ ਰੋਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਰੋਜ ਰੋਜ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਰੋਏਗਾ, ਮਨ ਕਲਪੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਸ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀ? ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ ਰਹਿਣ ਮੈਨੇ ਰਾਤ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜੋ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮ ਆਏ ਪਾਹੁਣ ਮੈਨੇ ਪਰਾਉਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰਾਉਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮ ਆਏ। ਤੋ ਅਰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਸ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਫਲਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ,
रस मिलदा है पदार्थ विचों, हुण परिवार भी किनारा करके चला गया, पदार्थ भी कोल नहीं रहे ते शरीर दी तंदुरुस्ती भी नहीं रही, तो कहना पेगा ना जीवन बेरस है। इस तरह दा मनुख हार के कदी कदी एक फैसला ले लैंदा है कि जद मेरे कोल हुण रस ही नहीं तो हुण मैं जीवन नूं रख के करना भी की है, जीवन दी लीला नूं खत्म कर दई है। तो इस तरह दा मनुख फैसला लैंदा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मरकर बिना चैन आया तो किधर जाएंगे हम। वो कहिंदा है कि हुण अपने आप दी हत्या कर लईए, आत्म हत्यारा बन जाना चाहिए, अपने जीवन दी लीला अपने हथां दे नाल समाप्त कर लेनी योग है। पुछिए क्यों? वो कहिंदे जद जीवन दे अंदर रस ही नहीं तो जीवन रख के करना भी की है, मां भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, भैन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तंदुरुस्ती भी नहीं है, ते फिर उस तो बाद पदार्थ भी नहीं है, कुछ भी ते कोल नहीं। तो जद कुछ भी पास नहीं तो हुण जीवन नूं भी पास रख के की करना है, इहनूं खत्म कर लईए तां कि दुखां तों छुटकारा हो जाए। पर बड़ा वड्डा इक भरम है, अगर आत्म हत्या करन दे नाल जां मर जाण दे नाल दुखां तों छुटकारा हुंदा तो फिर जो जन्म लैंदिआं सार कुछ बच्चे अपाही जन्म लैंदे ने, लूले लंगड़े जन्म लैंदे ने, नेत्रहीन जन्म लैंदे ने, कमले जन्म लैंदे ने, फिर यह जन्म क्यों ले रहे ने? आखिर किसी ना किसी कर्म का फल ही इन्हां नूं मिल रहा, किसी कर्म के फल कारण ही लूले लंगड़े अपाहिज नेत्रहीन या बावरे जन्म लैंदे ने। मरण तो बाद दुखां का छुटकारा नहीं है, दुखां का छुटकारा करन वास्ते सानू मिलिया है जीवन। जो मरते दम तक दुखी रहा, दुख दे विच जीवन चलाउंदा रहा, मरण तो बाद एकदम दुख किवें मुकेगा? अगर मरण तो बाद दुख मुक जांदा है फिर ते किसे पाठ पूजा कथा कीर्तन भजन बंदगी दी लोड़ भी की है, क्योंकि मरना भी सारिया ने ते दुख भी सारिया दा गलों लै जाना है, मुक जाना है, फिर लोड़ की है तमाम चंगे कर्म करन दी, पाठ पूजा भगती दे राह ते चलन दी फिर की लोड़ है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा, मनुख दा जीवन चल रहा है किसे ना किसे रस दा बजा होया। हुण दूसरी बेनती, रस भावे संसारी होवे ते रस भावे निरंकारी होवे, बड़े ध्यान नाल मेरी इस बेनती नूं समझण दी कृपा कर लियो। बेशक रस दुनियावी है ते बेशक रस धर्म दी दुनिया दे उत्ते चलदिआं चलदिआं मिलिआ है, रस रब्बी है या रस संसारी है आम दुनिया विचों मिलिआ। रस दी समझ उहनूं ही हुंदी है जिन्ने रस नूं जाणिआ है, जिन्ने रस नूं चखिआ है, जिन्ने रस नूं चखिया नहीं उन्हों रस दी समझ पाएगी भी के। आप गुरुद्वारे आए हो, गुरुद्वारे दे अंदर चंगे चंगे खान वास्ते पदार्थ बन गए, लड्डू मठियाई जलेब बन गए, पकौड़े बन गए, दाल सब्जी बन गई, प्रशादा पूरियां बन गए, बड़ा कुछ बनिया, तुसी ए प्रशादा छकिया, तुहानूं समझ पई कि प्रशादा स्वाद सी जां नहीं स्वाद सी, प्रशादे दा आनंद बड़ा लिया। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੋ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਸ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਬੇਰਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰਸੀ,
अपने मन दे अंदर बेरसी, परिवारां दे अंदर बेरसी, एक घर दे सी समेल दी चार दवारी दे अंदर रह के भी कोई आनंद मगर नजर नहीं आंदा, बेरसा जीवन बतीत कर रहे ने सब लोग विरलिया विरलिया नू छड के। कारण कारण है कि परमात्मा दा रस जानिया नहीं। खैर होर मैं बेनती कर रहा सां, भगतां दे जीवन दे अंदर एक इस तरह दा मूड आउंदा है, भगतां दे जीवन दे अंदर एक इस तरह दा मूड आया जिस मूड दे उते आके भगत खामोश हो गए, एवें कह लो बिल्कुल चुप धारण कर गए। ते साडी दुनिया दा दस्तूर यह है कि दो जने आपस दे अंदर बोलदे होण, उत्तर प्रश्न करदे होण, सवाल जवाब करदे होण, दोवां विचों एक बोली जाए दूजा चुप कर जाए, साडी दुनिया का मनना है जिहड़ा चुप कर गया इहनू कासे का पता नहीं होना, जवाब देन जोगा मटीरियल नहीं होना, ते या इहनू कुछ ज्ञान नहीं जो खामोश है जो जवाब नहीं दे रहा। आम दुनिया ही सोचती है, अगर यह सच्चा हुंदा ते अगों बोलदा ना, जवाब देंदा ना। भगतां दे जीवन दे अंदर एक इस तरह का मोड़ आया जिथे जाके भगत बिलकुल हार गए। मैं लफज ना वरतन योग वरत रहा, भगत हार गए दुनियादारी दे तौर दे उते, भगत चुप कर गए। है ते भगत जेतू पर दुनिया दे सामने उन्होंने चुप करन ते मजबूर होना पिया। सारा बनारस एक सुर दे अंदर प्रश्न करदा है कि कबीर साहब, रविदास साहब, जे तुसी रब जी दे नाल अपने मन नू जोड़ के रस नू पा चुके हो, तुसी कह भी रहे हो कि परमात्मा है, परमात्मा दा रस है और वह रस असी जानिया भी है, पर साडा प्रश्न है जे तुसी रस नू जानिया है ते फिर बयान करो रस हुंदा किवें दा है। ते कल दे सलोक विच आपने सुनिया सी किवें बयान करिए, की कहिए कि वह रस शहद वर्गा है, रस मिश्री वर्गा है, रस गुड़ वर्गा है, रस दुध वर्गा है, किस वर्गा रस है? परमात्मा दे रस दी ते कोई उदाहरण नहीं, वह अपनी उदाहरण आप है। भगत कबीर साहब जी दे उत्ते प्रश्न होया कि बोलो रस पाया है ते दसो, बोल के दसो रस किस तरह दा है। ते हुण भगत जी उन्हां लोकां दे सामने चुप हो जांदे ने। अखीरी लोकां वल्लों बोछार करके प्रश्न आ रहे ने, धड़ाधड़ प्रश्न आ रहे ने, ते कबीर साहब अखीरी बोले ने, कहन लगे कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। कहन लगे सजनो अगर एक गुंगे मनुख नू आप मठियाई खाण वास्ते दियो, चंगा स्वादला भोजन खाण वास्ते पेश करो, ते भोजन खवान तो बाद उहदे उत्ते प्रश्न करो भी बोल के दस इहदा रस किस तरह दा है। हुण उस भोजन दा रस गुंगे नू आया ते है, ते आया भी जरूर, इहदे विच कोई शक नहीं, क्योंकि गुंगे दे चेहरे दे उत्ते जिहड़े खुशी दे चिन्ह प्रगट होए, उन्हां चिन्हां तो समझ आ रही है, निशानियां तो समझ आ रही है इहनूं भोजन दा रस मिलिया है। पर जे आप चाहो कि गुंगा मनुख जुबान दे नाल बोल के बयान करे कि रस किस तरह दा हुंदा है, ते गुंगे दे बस विच नहीं है। रब जी दे राह दे उत्ते चलदियां चलदियां जद कोई रब्बी रस दे नाल भरदा है, ते सच जाणिया जे उहदे पास उस रस नूं पेश करन लग्गियां लफज रहिंदे नहीं है। अगर वह रस लफजां विच पेश हो जांदा है ते फिर उहने रस नूं पाया ही नहीं है। मैं उदाहरण दित्ती सी लफजां दे अंदर ते खाधे हुए भोजन दा रस परोस के तुसी दूजे दे सामने पेश करना चाहो नहीं हुंदा। आप किधरे दूर दराडे सैर सपाटा करन वास्ते चले जांदे हो, पिकनिक ते चले जांदे हो, कोई चंगी थां वेखदे हो, रमणीक जगह वेखदे हो, समुंदर दा किनारा है, सवेर दा समां है, घा दे उत्ते त्रेल पई नजर आ रही है, लहरां बनदियां मिटदियां नजर आ रहियां ने, सूरज दियां किरणां सुनहरी रंग दियां बड़ा मनमोहना जिहा दृश्य पैदा कर रहियां ने, इह सारा रस घुम्मण फिरन दा सूबा दा नजारा तुहानूं मिलिया है, उह नजारा लफजां दे राहीं परोस के आप अपने किसे सज्जन मित्र दे सामने बयान करना चाहो तो कि सज्जन नूं लफजां दे राहीं उह नजारा दिस जाएगा। जो रस तुसी पाया वो रस तुहाडे सुनन वाले श्रोते नूं आ जाएगा नहीं मिलेगा। आम दुनियावी चीजां दा रस लफजां दे राहीं परोसिया नहीं जांदा, परमात्मा दा रस ते बिल्कुल ही नहीं परोसिया जांदा।
परमात्मा जानन दा विशा है। परमात्मा नू जिन्ने थोड़ा बहुत जानिया है उन्हें रस नू मानिया है, जिन्ने नहीं जानिया उदे अंदर प्रश्न ही पैदा हुंदा रहिंदा है, परमात्मा भी नहीं, परमात्मा दा रस भी नहीं। ये कहावतां ने, ये गल्लां ने, परमात्मा ग्रंथां दे सलोकां विच बंदे, परमात्मा नामी कोई चीज नहीं है। उदे अंदर इस तरह दे बलबले चलदे ने, इस तरह दे उत्तर प्रश्न उधेड़ गुण उदे अंदर चलदी है। तो मैं अर्ज कर रहा सन लफजां दे भांडे विच परमात्मा दे रस नू परोस के किसे दे सामने पेश करना बड़ा मुश्किल है। अगर परमात्मा ही एक लफजां दे बर्तन विच परोसिया जांदा है ते फिर परमात्मा साडे भांडे तो वड्डा नहीं है, साडे बर्तन तो वड्डा नहीं है। जो चीज मेरे भांडे विच आ गई वह भांडे तो वड्डी नहीं है, जो चीज मेरी खोपड़ी विच आ गई मेरी खोपड़ी तो वड्डी नहीं है, जो मेरे लफजां दे बोलन विच आ गया वो मेरे लफजां तो वड्डा किस तरह होया, जो मेरे समझन विच आ गया मेरी समझ तो वड्डा वह किस तरह होया, जो मेरे बोलन विच आ गया मेरे बोलना तो वड्डा वह किस तरह होया। परमात्मा बेअंत है, ना वह खोपड़ी दे प्याले विच आउंदा है मुकम्मल तौर ते समझ विच आउंदा है, ते ना उहदे मिलाप दा रस ही लफजां दे भांडे विच परोसिया जांदा है। उहदा रस भी बर्तन विच आउंदा नहीं है, समाउंदा नहीं है, परमात्मा बेअंती रह जांदा है। असीं उहनूं भांडे दे अंदर परोसण दा यतन करदे हां पर वेखदे हां कि बहुत सारा बर्तन तो बाहर ही पिया है, बेअंत पिया है, था पिया है। गुंगे मनुख दे कोल जुबान ते हुंदी है पर गुंगे मनुख दी जुबान दे कोल ये समर्था नहीं हुंदी कि वह लफजां दे उदेड़ गुण कर सके, लफजां नूं जन्म दे सके और लफजां दे राहीं किसी नूं कुछ समझा सके। परमात्मा दे राह दे उत्ते चलदा चलदा मनुख एक अवस्था दे अंदर पहुंच के गुंगे वाली हालात विच हो जांदा है। लोग पुछदे ने रब दे मलाप दा रस ते उहदे कोल परोसण दा कोई जरिया नहीं हुंदा, किवें पेश करे कि रस इस तरह दा है, लोग कह देंदे ने पागल है। इस तरह ही कबीर साहब दे नाल होया है, लोगों ने पुछया है कि बयान कर रस किस तरह दा है, ते कबीर साहब कहिंदे ने कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है, ते लोगों ने ताड़ी मार दिती झूठ बोलदा है पागल है। लोग कहें कबीर बौराना, सारे लोगों ने एक सुर होके कह दिता है कबीर बौरा है, कबीर पागल है, कबीर बौराना। पर कबीर साहब कहिंदे ने कबीर का मरम राम पहचाना, कबीर दे असली भेद नूं ते उहदा राम जानदा है, परमात्मा जानदा है। लोग की जानन कि मैनू रस मिलिया है ते किस तरह दा मिलिया। गुरबाणी दे अंदर एक होर भी बचन आउंदा है, जे हों जाना आखां नाहीं कहना कथन ना जाए। जे मैं जान भी जावां परमात्मा तू इस तरह दा है ते आख्या नहीं जांदा। जे हों जाना आखां नाहीं कहना कथन ना जाए, तू मेरे कहन दे अंदर मेरे कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है। जे मैं जान भी लेना कि परमात्मा तू इस तरह दा है, मेरे कहन कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है। अज दा इह सलोक भगत फरीद साहब जी ने जो बख्शिया कि अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। अज मैं परमात्मा दे नाल अपनी आत्मा नूं मिला नहीं सकिया, अज मैं मन नूं रब जी दे नेड़े कर नहीं सकिया, मैनूं जो रस रोज रोज कंत परमात्मा दे नाल मिलन तो बाद मिलदा सी, सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न तो बाद मिलदा सी, अज ओह रस नहीं मिलिया। भगत फरीद साहब जी दे सलोक दा सेंट्रल आइडिया केंद्री भाव इस तरह है। एक होर भी बेनती करदा चलां, कदों महान रस मिलदा है जदों छोटे रस वलीन हो जांदे ने, चले जांदे ने, या फिर इस तरह कह लो कि छोटे रस मिलदियां वड्डा रस मिलदियां छोटे रस अपने आप चले जांदे ने। बालपन दे अंदर हर बच्चा खड़ौणियां दे नाल खेडदा है, गुड़ियां पटोलियां दे नाल खेडिया जांदा है, पर जद ओ बाल बालपन दी उम्र नूं छड्ड के जवानी दियां दलहीजां दे उत्ते आण के खड़ा हुंदा है तो की उदों वी उहनूं खड़ौणियां दी लोड़ पैंदी? सियाणप वधन दे नाल, उम्र दा तकाजा वधन दे नाल खड़ौणे अपने आप छुट जांदे ने, उहनां नूं छड्डण दी लोड़ नहीं पैंदी।
अध्यात्मिक दुनिया दे अंदर धर्म दे राह दे अंदर जिवें जिवें कोई वड्डा ते उचेरा रस मिलदा है दुनियावी रस अपने आप छुटने शुरू हो जांदे ने मदम पैने शुरू हो जांदे ने। अगर कोई कामी है क्रोधी है निंदक है लोभी है तरह तरह दे बुराई दे रस दे नाल भरिया है ते ओ ए गल कहिंदा कि मैं रब्बी रस नूं भी पा लिया है बिल्कुल कोरा झूठ बयान कर रहा है। या ते रब्बी रस है ते या फिर बुराइयां दा रस है। जिथे रब्बी रस आ जांदा है उथे बुराइयां दे रस नूं रहण वास्ते जगह मिलदी कदों है इह ते अपने आप चले जांदे ने। इस तरह बेनती करां कि जे समझ होवे जो मेरे हाथ दे अंदर चीज फड़ी है ये कौडियां ने ये भी समझ होवे जो मेरे सामने चमक दे रहा है ये कोही नूर हीरा है कोही नूर हीरा हाथ दे अंदर आउंदियां कौडियां नूं छड्डदियां देर नहीं लगदी अपने आप उह छुट जांदियां ने। वड्डी चीज दे मिलदियां छोटी चीज अपने आप छुट जांदी है उहनूं छड्डन दी लोड़ नहीं पैंदी पर यह समझ होवे कि यह वड्डी है ते यह छोटी है इन्नी परख जरूर होवे इन्नी समझ जरूर होवे। वड्डी लग्जरी कार दे मिलदियां छोटी कार अपने आप चली जांदी है सीस मैल दे मिलदियां ही छोटा कार अपने आप चला जांदा है चंगा कपड़ा मिलदियां ही खद्दर अपने आप चला जांदा है चंगा भोजन मिलदियां ही सादा भोजन जवार बाजरा अपने आप चला जांदा है। पर समझ होवे कि इन्हां दोवां विचों चंगा केड़ा है इन्हां दोवां विचों म्यार नीवा किहदा है हौला किहड़ा है। महान दे मिलदियां ही छोटा अपने आप वलीन हो जांदा है चला जांदा है। अगर साडे मन दे अंदर काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली दा रस है ते पूरी तरह भरिया है ते खिमा चाहवांगा फिर रब्बी रस नूं अजे नहीं पाया। जिस दिन रब्बी रस दियां बूंदां मिलणगियां ये अपने आप ही जाने शुरू हो जाणगे छुटने शुरू हो जाणगे इन्हां नूं कहण दी लोड़ नहीं कि तुसीं चले जाओ छड्डन दी लोड़ नहीं अपने आप छुट जाणगे पर शर्त यह है कि इन्हां दी जगह दे उत्ते कोई ना कोई दूसरा आउणा चाहीदा है और आउणा चाहीदा है महान आउणा चाहीदा है वड्डा तां इह रस छुटणगे। गरीब नवाज की बाणी का एक बचन मैं तुहाडे सामने रखदा चलां पातशाह कहिंदे ने रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोड़े रस शेजा मंदर रस मीठा रस मास। कहन लगे रस सोइना तू ते सोने नूं अपने शरीर दे उत्ते पा के इत्थों वी रस लै रहे कड़ा पाया मोटा लोकां नूं विखा रहे कांटे पाए ने मोटे लोकां नूं विखा रहे शिंगार तकरीबन लोकां नूं विखाउण वास्ते रह गया। खिमा चाहवांगा शिंगार लोकां दी नुमाइश वास्ते रह गया। शिंगार हुंदा सी केवल पति दी खुशी वास्ते पर अज लोकां दी नुमाइश वास्ते पति दी खुशी वास्ते नहीं। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ इस तरह दे ने जो तू सोना अपने तन दे उत्ते गहणियां दे रूप विच हंडा के रस लै रहा है सोने विचों तैनू रस मिल रहा है अरूपा चांदी विचों रस मिल रहा है कामन कामन मैंने औरत औरत विचों रस मिल रहा है रस रूपा रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास तू ते इथों भी रस लै रहा है कि थोड़ा जिहा परफ्यूम महंगा लैके अपने तन दे कपड़िया दे उत्ते ला लिया है ते इहदे अंदर ही फुली जा रहे हैं अहंकार करी जा रहे हैं। परमल की वास किन्नू कहिंदे ने सुगंधी नूं चंदन की महक नूं अगर तू महक का छुड़काव कर लिया है तू इन्ने दे अंदर ही अपने आप नूं वड्डा समझ रहे हैं दूजे नूं छोटा समझी जा रहे हैं। रस परमल की वास रस घोड़े कारा चंगियां तेरे कोल ने घोड़े चंगे तेरे कोल ने रस शेजा मंदर मंदर घर भी चंगा तेरे कोल है ते घर दे अंदर शेज भी मखमली तेरे कोल है। आखिया रस घोड़े रस छेजा मंदर रस मीठा रस मास ये सारे रस तेरे कोल ने इते रस शरीर के कह घट नाम नवास दस परमात्मा दे नाम दा रस तेरे अंदर नवास करे किथे टिके किथे जिथे टिकना सी ओ जगह तू खाली कीती नहीं भरे हुए बर्तन दे अंदर किसे नूं कहिए होर पदार्थ पा होर भर किवें भरेगा तुहाडी थाली भोजन दे नाल पहले ही भरी पई है उपरों होर कौके दे विच पाई आ किथे अगला पावेगा अगर पाएगा ते बाहर डुलेगा अंदर समाउण दी ते जगह है नहीं अंदर टिकन दी ते जगह है नहीं।
इन्ने रस तेरे अंदर ने, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। पहला अपने अंदरों थोड़ा जिहा इन्हां रसां नूं विलीन कर, इधरों नाल नाल रब्बी रस नूं लियाउण दा यतन कर। एक दिन आएगा ये सारे रस चले जाणगे, परमात्मा दा रस तेरे अंदर टिक जाएगा। दूसरी बेनती मैं एक संगत दे सामने होर करदा चला। लंगर दे अंदर तरह तरह दे स्वादिष्ट भोजन बने हुंदे ने, लड्डू जले मठियाईयां। मिठे दी गल मैं करनी, उचेची मिठे दी। आप अपना पात्र लेके हथां दे अंदर थाल लेके अगे अगे वधदे तुरे जांदे हो। लंगर वरताउण वाला, लंगर पाउण वाला तुहाडे पात्र दे अंदर, तुहाडे बर्तन विच भोजन पाई जा रहा है। जिहड़ी चीज खाण वास्ते तुहाडा मन ते ललचा रहा है, पर नाल ए भी

रस तुहाडे मन नूं चंचल बनाउंदा है, मन नूं मैला करदा है, उहनूं लैणा छड्ड दिओ। बस इन्ना ही ध्यान रखना है। अगर चुगली कन्ना दे राही कोई तुहाडे अंदर पा रहा है तो लैणी बंद कर दिओ। मन इहदे नाल चंचल होएगा, मैला होएगा। अगर निंदा तुहाडे कोल कोई बह के कर रहा है तो तुहानूं इह समझ होवे कि निंदा दे नाल मन मैला होंदा है। आप निंदा करनी ते निंदा सुननी छड्ड दिओगे, ते जे समझ नहीं ते फिर खाई जाओगे। कदी कदी लंगर दे अंदर पागल मनुख भी आ जांदे ने, कदी कदी। ते पागल मनुख नूं इह पता ही नहीं हुंदा कि की खान दे नाल मेरा रोग वध जाना है, की खान दे नाल रोग घटना है। मस्ताने अध कमले लोग कदी कदी लंगर विच मिलदे ने, उह अपनी थाली नको नक भरा लैंदे ने, और भरा भी हर पदार्थ दे नाल लैंदे ने। भावे वह खान दे नाल उहनां दा रोग वध ही जाना है, पर उहनां नूं समझ नहीं, वह खाई जा रहे ने। धर्म की दुनिया के अंदर वह मनुख हकीकत विच पागल है जिन्हों यह नहीं पता कि किहड़े रस दे नाल मन टिकदा है ते किहड़े रस दे नाल मन चंचल हुंदा है। अगर इन्नी समझ आ जाए ना कि इस रस दे नाल मन विच खराबी बनदी, मन विच खरूद बनदा है, मन चंचल हुंदा है, मन बीमार हुंदा है, रोगी बनदा है, आप नहीं लोगे। यह रस लैण दे नाल मन टिकदा है, शांति बनदी, सहज बनदा है, सुकून बनदा है। आप वो रस लोगे ते ज्यादा तो ज्यादा लोगे। होर बेनती करा, सारे रस अपनी अपनी जगह दे उत्ते ठीक ने। रस मना नूं प्रभावित करदे ने। काम दा रस मन नूं प्रभावित करदा है, निंदा चुगली दा रस मन नूं प्रभावित करदा है। पर अर्ज मैं वार वार ओही कर रहा, तुहानूं समझ होवे कि केड़ा रस मेरे मन वास्ते ठीक है ते केड़ा रस मेरे मन वास्ते ठीक नहीं है। गुरबाणी दा एक फैसला होर मैं तुहाडे सामने रखदा चलां। पातशाह कहिंदे ने आण रसा, आण मैंने बहुते सारे दूजे, गुरबाणी नूं छड के दूजे, आण आण रसा जेते तै चाखे निमख ना तृष्णा तेरी लाथे। पढ़दे हो ना बाणी दे अंदर, गुरबाणी तो बगैर, परमात्मा दे चिंतन तो बगैर जिन्ने भी रस तू होर लै ले, आण रसा जेते तै चाखे। पातशाह कहन लगे निमख ना तृष्णा तेरी लाखे लाथे, हर रस का तू चाखे साध। कहन लगे हरी परमात्मा दे रस दा भी स्वाद जान, हर रस का तू चाखे साध, चाखत ही कोई रहे बिस्माद। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती कोई त्रिपतारी। कहन लगे अमृत रस नू लै ते लै अपनी जुबान दे नाल, जुबान दे नाल जपना शुरू कर ते फिर उस तो बाद मन नू खीवा कर इस रस दे नाल। एक बेनती मैं उचेचे तौर ते आप संगतां दे सन्मुख होर रखनी चाहवांगा, वो ए है कि जदों आप भोजन छकदे हो उदों नाल दी नाल तुहानू भोजन दे रस दी समझ पै जांदी है। पहला टुकड़ा, पहली बुरकी मुख विच पाई ते तुहाडी जुबान रस दी परख करके दस देंदी है, इहदा रस कौड़ा है, रस मिठा है, रस खट्टा है, रस लूणा है, रस चटपटा है, रस नमकीना है। तुहाडी जुबान परख कर देंदी इस भोजन दा रस किवें है। इस तरह ते नहीं है ना कि भोजन खाओ अज ते रस बनेगा आने वाले कल नूं, या भोजन खाओ अज ते रस बनेगा एक हफ्ते बाद, वीक बाद, महीने बाद, साल बाद। इस तरह का नियम ते नहीं है, यह दस्तूर ते नहीं। धर्म की दुनिया के अंदर भी यही दस्तूर है। यह मत सोचो कि मैं बाणी का जाप कर रहा मैनू अज रस नहीं मिले, इहदा रस कल नूं बन जाएगा, नहीं बनेगा। जो हुण करद्या करद्या रस नहीं आया उहदा कल नूं भी रस नहीं बनेगा। गुरबाणी का चिंतन भजन करद्या करद्या रस नालों नाल पैदा होंदा है, नालों नाल उसे वक्त। ते जे नालों नाल रस नहीं बनिया उस खादे भोजन का रस कल नूं भी नहीं बनेगा। साडा मन इस भरम के अंदर है, हुण करी चलो इहदा लाभ अगले जन्म मिलेगा। शुरुआत अज तो है, अगर अज पदार्थ का रस नहीं मिलिया कल नूं किवें मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਰਸ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਢੋ, ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਪਿਆ, ਹੁਣ ਪੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ।

क्रोध निंदा चुगली ईर्ष्या बखेली तो वेल मिले तो गुरुद्वारे आवे। जो कोई जवान आ रहे हो उन्होंने मेरे वालों उच्चे ची बधाई। तो खैर जवानी के अंदर पाया है क्रोध धोखा धड़ी अयाशी बदमाशी के अड्डे होर दुनिया भर के अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी जवानी विच। दूसरे पासे धर्म के मार्ग के उत्ते जवानी नू खर्च करके की पाया है। इधर वेखो भी मेरी जवानी के चार दिन के अंदर मैं धर्म की दुनिया विचों की पाया है ते तुहानू इधरों जीरो मिलेगी। कुछ भी नहीं पाया, ना धर्म का ज्ञान ना धर्म का पेंडा तय किया ना शांति बनी ना सुकून बनिया ना चैन बनिया कुछ भी नहीं बनिया। जवानी बीत गई, जवानी चली जाए विकारां दे अंदर। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने मैनू अफसोस बड़ा है, जवानी चली जाए रब दे प्रेम दे अंदर। भगत फरीद साहब कहिंदे ने मैनू रंचक मात्र भी अफसोस नहीं है। जोबन जांदे ना डरा, कहन लगे जोबन चला जाए कोई डर नहीं है, पर यह वेखना है कि जाए किस दे बदले। तन चला जाए कोई गल नहीं, पर यह भी ते वेखो ना जाए किस दे बदले। जीवन चला जाए, जीवन की कुर्बानी हो जाए, पर कुर्बानी जिस मंजिल तो कर रहे हो वह मंजिल ही कोई खास ना हो, आम मंजिल हो तुहाडी कुर्बानी का की अर्थ होया, कुर्बानी का मुल की पेगा। मुल कुर्बानी का उन्हें पाना है जिदे तो कुर्बान हो रहे हो। अगर काम तो कुर्बान हो रहे हो तो की मिलिया है। निंदा चुगली ईर्षा बखीली तो कुर्बानी चली गई, कुर्बानी दिती गई जवानी दे तो की मिलिया, हौके चोरे कले कलेश यही तो मिलिया, होर कुछ भी नहीं मिलिया। धोखा धड़ी अयाशी बदमाशी तो जवानी कुर्बान हुई तो मिलिया की यह चिंता मिली, यह कलेश मिलिया, होर कुछ भी नहीं मिलिया। भगत जी कहिंदे ने जवानी चली जाए मैनू डर नहीं है, जोबन जांदे ना डरा, जोबन जा रहा है, जवानी जा रही है, जवानी की कुर्बानी है पर कोई डर नहीं है। भगत जी डर किस गल का है, कहन लगे जे शह प्रीत ना जाए, रब की प्रीत ना चली जाए, जवानी चली जाए, जवानी दे इवज जवानी नू खर्च करके जवानी दे बदले जे मैनू थोड़ा जिहा रंचक मात्र परमात्मा दा ज्ञान मिल जाए, परमात्मा दा प्रेम मिल जाए ते कहन लगे मैं जवानी नू कई वार कुर्बान करन लई तैयार हां, कई वार एक वार नहीं अनेक वार कुर्बान करन लई तैयार हां। अगली पंक्ति विच भगत जी कहिंदे ने फरीदा कितनी जोबन, किन्ने सारे जोबन, किन्नियां ही जवानियां, प्रेम बिन आख्या प्रीत तो बिना, कितनी जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए, किन्नियां जवानियां मुरझा गई ने रब जी तेरी प्रीत तो बगैर, किन्नी वार जवानी मिली है जवानी कमला गई है तेरी प्रीत तो बगैर। एक बेनती मैं संबंध विच होर करदा चला, जे आप चाहो कि जवानी जां जीवन इस वास्ते मिलिया है कि दो बच्चियां नू जन्म देना है, उन्हां नू पढ़ाउणा लिखाउणा है, उन्हां दे ब्याह कारज करने ने, बस इस वास्ते जवानी जां जीवन मिलिया है। प्यारियो मेरी बेनती नू बिल्कुल न्यूट्रल माइंड करके समझण दी कृपा करियो। इह काम इस जून विच ही नहीं है, असीं पिछलियां जूनां विच भी करदे आ रहे हां। जन्म बच्चियां नू दित्ता है ते पिछलियां जूनां विच भी दित्ता है, इस जून विच ही नहीं, पशुआं दे भी ते बच्चे हुंदे ने, परिंदियां दे भी ते बच्चे हुंदे ने, सप दे भी ते बच्चे ही हुंदे ने। जितनियां जूनां ने उन्हां सारियां जूनां दी वेल वध रही है, उन्हां सारियां जूनां दी पीढ़ी चल रही है, पर तुहाडी पीढ़ी चले। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सूत्र साडी झोली दे अंदर बख्शे, तेरी पीढ़ी चले पर किवें चले। गुरु के कीर्तनी अक्सर शब्द का गायन करया करते ने, वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। तेरी वेल वधन दे नाल नाल तेरे मन दे अंदर धर्म का प्यार वधे, तेरी जीवन तेरी जवानी दे अंदर धर्म का चा धर्म का प्रेम बने। अगर वेल वध रही है और धर्म तो बगैर वध रही है, खिमा चाहवांगा वार वार ओ वेल पशुआं दे तोली वध रही है। बच्चे साडे ने, बच्चे पशुआं दे ने, अपनी हैसियत दे मुताबक असीं घर बना लैने आ, ज्ञान सूझ बूझ दे मुताबक

पढ़ोगे उदा रस कई गुणा वध, कथा करोगे कई गुणा वध, कथा सुनोगे रस कई गुणा वध, कीर्तन सुनोगे करोगे रस कई गुणा वध। पर अज मैं वेख रहा कर्म ते बहुत हुंदा है, उदा रस नहीं है, उदा रस नहीं बन रहा। कारण की है, जीवन उथे दा उथे ना चुगली ना निंदा ना ईर्षा ना बखीली कुछ भी नहीं छड़ रहे। कारण बेहोशी दे अंदर कर रहे हैं, जाके नहीं। तो भगत फरीद साहब जी का एक सलूक आधार बना के कुछ बेनतियां मैं आप संगत दे सन्मुख रखन दा नवाना यतन कीता। सलूक सी फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे काम। कर्म करो पर अखां खोल के करो, नेत्र बंद करके ना करो। जो नेत्र खोल के कर्म करदा है ओनू अंतले पल पश्चाताप नहीं करना पैंदा, पछताउणा नहीं पैंदा। ते जो नेत्र बंद करके कर्म करदा है बेहोशी दे अंदर, पछतावा ओदे सिर दा बोझ बने रहिंदा है, पछतावा कदी जांदा नहीं है। कर्म करो पर नेत्र खोल के, की करना मेरे लिए योग है, की करना अयोग है, की सोचना मेरे लिए भला है, की सोचना मेरे लिए बुरा है। अपने जीवन दी डायरी आप नोट करया करो, मैं बुराइयां किन्नियां कर रहा ते चंगियाइयां किन्नियां कर रहा, बुरा किन्नी बार बोलदा, चंगा किन्नी बार बोलदा। अगर इस तरह चलोगे जीवन दे अंदर अवश्य लाभ मिलेगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी कृपा दे नाल, दीन दयाल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी रहमत करन, जिन्ने श्रोते माई भाई गुरु दरबार दी रौनक सत्कार योग मेहरवान सतगुरु दीना बंधु भगत वत्सल शहनशाहे दो आलम सर्ब सांझी वालता दे प्रतीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, आप प्रेम सहित सरवण कर रहे से श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे हिरदे विचों उपजी हुई पाक बाणी श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन बड़े प्यार दे नाल आनंद भरपूर भाई नरिंदर सिंह जी आप जी नूं अपनी कला दे जोर विखाउंदे होए रब्बी बाणी दा गायन कर रहे सन। रोज रोज सवेर दे वकत आप लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। भगत फरीद साहब जी दे दो सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। पहला सलोक फरीदा दर दर वाजे जाए कै कै डिठो कड़ियाल, एहो नदोशा मारिये हम दोषा दा क्या हाल। मार जदों भी पैंदी है उदों किसे कारण करके पैंदी है, कारण तो बगैर मार नहीं पैंदी। मां बच्चे नूं गर्भ तो जन्म दे के बच्चे दी लालना पालना करदी है, मूंह दी बुरकी कढ के बच्चे दे मूंह विच पौना जानदी है, गिल्ली जगह ते आ पै के सुके ते बच्चे नूं सवाउणा जानदी है, अपने शौक अधूरे रख के ते बच्चे दा शौक पूरा करना भी जानदी है। पर कदी कदी मां दा दूसरा रूप भी सामने आउंदा है, जिथे मां दे ए रूप ने बच्चे वास्ते अति कोमलता अति निग प्यार सब कुछ बच्चे तो कुर्बानी अपनी जवानी नो नास कर लेंदी है मां बच्चे दी लालना पालना करन वास्ते बच्चे नो जन्म दे के। जिथे मां दा एक रूप ए है ठीक दूसरे पासे दूसरा रूप कदी कदी ओ मां बच्चे नूं झिड़कां देंदी होई बच्चे दे मुंह ते दो थप्पड़ जड़दी होई चपेड़ा मारदी होई भी तुहानूं नजर पैगी। तो हुण इह मां दा दूसरा रूप है। मां दा सुभा नहीं है कि ओह बच्चे नूं क्रोध विच आण के बच्चे दे मुंह दे उत्ते थप्पड़
ਪੜ ਚੜੇ।

जिन सिरिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किच कर

शीतल है, तू शुद्ध है, ते गुरु नानक दा सिख इना कु शुद्ध ही ओदे नेड़े आउन वाला भी पवित्र हो जांदा है। जदो थल्यो पुछया पूर्ण सया तेरे अंदर तब्दीली क्यों, ते ओने रुबाई कही, कहन लगा वह गुरु चंबे दी बूटी मन मेरे विच गुरमुख लाई हु। भाई वीर सिंह कोल बैठे सन, कहन लगा वह गुरु चंबे दी बूटी मन मेरे विच गुरमुख लाई हु। कहन लगा आपे हयात दा पानी मिलिया, देखो हुण ओ बूटी किवें फैलीए, नाम दी बूटी गुरमुख ने लाई प्रेर के, ते पानी कादा मिलिया अमृत दा, आपे हयात दा पानी मिलिया, नहर अर्श तो आई हु, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जद फुलन ते आई हु, ते भाई साहब दे चरण पकड़ के कहिंदा दुनिया दे लोक जुग जुग जीवे ए गुरमुख बाबल जिन्हें बूटी लाई हु। ए बाबल जिउंदा रहे जिन्हें मेरे अंदर नू धो दिता है। फिर चरण पकड़े, चरण भाई साहब दे धो दिते नीर दे नाल, ते भाई गुरदास कहिंदा है कि जे तू सिखी दा कुछ सिखना है ते याद रखी सिख पवित्र ही ओ शोधी, ते ओदे नेड़े जिहड़ा आके ढुकदा है सिख ओदे अंदर नू भी धो के रख दिंदा है। भाई साहब कह रहे ने धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चला निवाण नू निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, पानी तू निर्मल है सिख भी निर्मल है, जे तू शीतल है सिख भी शीतल है, तू लोकां दी चमड़ी ते अंदर दी प्यास बुझाने ते सिख भी लोकां दे अंदर नू बचन सुना सुना ठंड देंदे ही, जे तू शुद्ध है दूजियां दी मैल धोने ते गुरु नानक दा सिख ओह भी जे गुरु कृपा करे तां उहनां दे अंदर दी मैल नू धो देंदा है। हजूर दी बाणी विच इक पंक्ति आउंदी है बाबा नानक जी दे बचन ने, कमाई वाला सिख होवे ना, मैं अर्ज कर रहा केवल सिख ते कमाई वाला होवे, तुसी कुछ ना कहो, निंदिया तां बड़ी दूर दी गल, निंदिया ना करो। साहब कहिंदे ने गुरु नानक साहब जदों जपण वाला तेरे कोल आ जांदा है ना, तू मन लै पाप कीते ने, सारी जिंदगी कोई चंगा काम नहीं कीता, तेरे एक एक काम दा लेखा होना है, जदों तेरे कोल कमाई वाला आ जाए तू केवल एक वारी उनू गुरु का सिख जी कह के बुला ली, तेरे जी कहन दे नाल रब ने तेरे लेखे दे कागज पार देने। सिख किन्ना कु रब दे नेड़े वे, हजूर दी बाणी विच बचन हुंदा तुद ध्यान तीन धन पले, जेड़े तेनू ध्यान दे ने उन्हां कोल नाम दा धन है, नानक का धन सोई, कहिंदे ने मेरा भी ओ धन है जेड़ा सिखां दा नाम धन है, तुद ध्यान तीन धन पले, नानक का धन सोई, जे को जियो कह उन्हां को, जे जपन वाले नू केवल तू जी कह दे ता जम की तलब ना होई, तैनू कदी जमदूत तलबेगा ना। गुरु का सिख किन्ना खुश होते, एदा मतलब ओ जमा दियां फाइयां तोड़न दी समर्था रखदा है, सिख इन्ना खुश होते। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे संतन मौको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा, क्यों तुहाडे अंदर दा धोखा क्यों लै गया, कहन लगे इस करके धर्म राय दर कागज फाड़ दिते ने, संतन मौको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा। एदा मतलब इना सिख शुद्ध है कि ओदा अंदर निर्मल है, ओ दूजे नू ही पवित्र कर दिंदा है। एक एक पॉइंट ते आपां अगे तुरी जाइए, मैं संखेप विच अर्ज कर रहा, निर्मल है शीतल है शुद्ध है, ते दूजे नू भी अंदर दी शुद्धता बख्शदा है। जे भाई वीर सिंह वर्गा गुरमुख प्रोफेसर पूरन सिंह दे अंदर नू तब्दील कर सकदा है, केवल इस करके ओ पानी दी तरह आप शुद्ध सी, उन्हें दूजे नू भी अंदर दी शुद्धता बख्शी है। अगे भाई साहब कहिंदे ने बहु रंगी एक रंग है, पानी नू जितने रंगा विच भी मिला दियो पर ओ अपने अंदर दा रंग नहीं जे छड़दा, रंग मिला दियो कुछ समय तो बाद देखोगे ओ रंग तां थले बह जाएगा पर पानी अपने रंग विच फिर उत्ते आ जाएगा। गुरु का सिख रहिंदा अनेकां दे विचे पर अनेकां विच रह के भी अपने अंदर दे रंग नू नहीं जे छड़दा, भावें लखां लोक ओहदे कोल आउण ओ बहु रंगी हो के भी अपने अंदरों गुरु दे चरणां नाल जुड़िया रहिंदा। अगे भाई साहब कहिंदे ने बहु रंगी एक रंग है, सभना अंदर इको जानी, ते जिवें पानी भावें अक दा कौड़ा पेड़ा होवे पानी ओहदे विच भी टिकिया होया है, जे किते दाखां ते अंगूर मिठे ने पानी उन्हां विच भी टिकिया होया है, जे तुम्मे दा जहरीला रुख है पानी ओहदे विच भी टिकिया होया है, जे किते अंब दा स्वाद दिष्ट फाले पानी ओहदे विच भी है।